0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: जीओ आप जिन्हें बड़े प्यार नाल कीर्तन सुने हैं और ये जो ताल है भानुमती आप इसको सुने दो तुखे और उसके बाद हम कीर्तन की समाप्ति करेंगे। बड़ा आपने अभी प्यार से गाया है सुना है, मुझे बड़ी खुशी है।

संगत जी हो, ये आप सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी और राग ताल गुरबानी और प्यार, उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु

हर आप पे छोड़ बिछोड़ा हर पिन को तू जा को तू जा हर तू हर दिन को पूजा हर दिन को दूजा को नहीं हर दिन को दूजा।

एके दे एके बाण खाक बाद आतस ओ आब कोर लाओ है अल्ले अपेख सोई पुरान ओ कुरान ओई एक

आसमाना सरकार बुरे भले हम खाए बुरे भले हम खाए कृपा करो दीन के दाते कृपा करो दीन के दाते।

राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग की जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम दा पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।

बहुत प्रसिद्ध सरल पर गंभीर प्रकृति का राग है। यह राग लोक संगीत का इना अनिखड़वा अंग बन चुका है कनेका लोक गीतां विच इस दियां सुरां गूंजदियां सुनींदियां हन। टोडी बारे प्रसिद्ध है यह गा के गवैया राज दरबारां विच बख्शां दियां झोलियां भर लैंदा सी। गुरबाणी विच इको दे सलाहुण दा मजमून लिया है ताकि जीवड़ा दुनियावी दरां ते ना भटकदा फिरे। कोई एक ही किस्म दियां टोडियां सुनींदियां हन जिन्हां ने भी मनुखां दे दर जां लड़ पकड़े ओ दुखी पर जिन्हां प्रभु दा पल्ला पकड़िया ओह बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच ऋषभ गंधार धैवत कोमल

मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी परमेरा जियो पिंड सब रास्त मारी।

0: इंसान इस गल की खोज ना कर पैदा कितों होया सा कितों पैदाइश तेरी है एक नापाक पानी के कतरे तो वजूद ऐदा का खूबसूरत बनाई बैठा है ते वजूद करके तू अपने शीशे मोहरे जो खलो जांदा तो तेरा चेते नहीं करता हटन कदी वेख्या कर जिसने तेनू खूबसूरती दिती है पे ओ किड्डा खूबसूरत होवेगा ते कित्थों तू पैदा होया बंदे खोज दिल हर रोज
1: करीमल कमाल है
0: करीमल कमाल है गुरु गोबिंद सिंह जी कहते कैसा है करीमल कमाल है कि हुसनल जमाल है वो खूबसूरती का मुजस्मा ही है बस दी पर यह सोचा कर कितों उपजे दूजी गल कह रहे तीसरी गल जिंदगी है नाटक जेड़ा ना इट इज जस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड यह तो खत्म होने वाला ही है और तू हाले अपना आप सवारी जांदा सवारी जांदा इसे काम ते सारा दिन वेस्ट ना कर दिया ना ना ना ना यह सवाल अपने मन ते करके कितों उपजे कह रहे कह मान समावे बंदे खोज दिल हर जो तू यह खोजेगा ढूंढेगा तलाश करेगा ना फिर परेशानी मान दुनिया में बहुत ही देर नहीं रहना मेरे आदर योग मास्टर जी ने सवेरे अरदास तो बाद अपना बचन ही इथो आरंभ किया कि संसार नाशवंत है मैनू उस वेले याद आया सुनना जी पंजाबी विच ए जग सराय मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए ए जग सराय मुसाफरां दी इत्थे जोर वाले कई आ गए शदाद नमरूद फरून जाए बे दावा बन खुदा कहा गए अकबर शाह जाए विच दिल्ली दे जी फेरी वांग बन जा रहे हैं पा गए शाह मुहम्मदा रहेगा रब सच्चा वाजे कूड़ दे कई बजा शाह मुहम्मदा रब और रब दे वरसा है भगवान भगवंत दे वरसाए हुए अकाल पुरख दिया जोतां संभाली फिरन वाले ए महापुरश क्योंकि दो चीजा रहिंदियां संसार विच गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने

0: मैं दो कह बेटा माफ करना।
1: नाम रहे हो साधु रहे हो रहे हो गुरु गोविंद कौनान किए जगत में किन जपियो गुरु मंत्र।
0: नाम परमात्मा दा श्री वाहिगुरु दा सदी भी रहना ही है ते ते जेड़े भी उदा नाम लेंदे ने जिम्मे मुख तौर ते एक मैं हफ्ते तो लड़ी आप जी ने सुनाई है संत भूरी वाले गंगा दास जी आदर जो बाबा जवाहर सिंह साहब जी भाई साहब जवाहर सिंह साहब जी और परम परम परम आदर जो राजा साहब जी नाम रहे हो साधु रहे हो ये जिन्ना चिर चंद सितारे सियारे हैं धरती है आकाश है ये रहन गई और इन्हां दी यादा इसे तरह ही मनाईया जाणगी। दूसरी गल जेड़ा मास्टर जी होने अपना विचार आरंभ करने वेले कीती है कहंदे ने अरदास कीती है अरदास करनी है पर एकाग्रता नाल संबंध रखती है। सुनना जी उर्दू दा सज्जन खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है एवं ओपरी असी भी अरदास कर दे। मेरा एक सज्जन ग्रंथी सिंह है बड़ा लायक है बहुत लायक है ओदे बलहार जी कहंदा मैं बाहर जाके की करना एदां दा ही काम होना ना बाहर इत्थे ठीक है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਨੋ ਤਨੋ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਂ 19 ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो अर्ज करना खुदा मंजूर करता है दुआ जो दिल से होती है मुश्किल बड़ी जही है कि बड़ी मुश्किल से होती है। एकाग्रता मांगता है मन चित कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड चाहिए है तो जो वो हो जाएगी तो फिर बंदा आपे इस ख्याल का

तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लडाया। रिलाइंग ऑन योर मर्सी डियर लॉर्ड आई हैव इंडल्ज इन सेंशुअल प्लेयर्स लाइक ए फुलिश चाइल्ड आई हैव मेड मिस्टेक्स ओ लॉर्ड यू आर माई फादर एंड मदर। इट इज इजी टू स्पीक एंड टॉक बट इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट योर विल। पॉज। I stand tall, you are my strength, I know that you are mine. Inside of all and outside of all, you are the self-sufficient Father. O Father, I do not know how can I know your way. He frees us from bondage, O saints, and saves us from possessiveness. Becoming merciful, my Lord and Master has ended my comings and goings in reincarnation. Meeting with the Guru, Nanak has recognized the Supreme Lord God.

चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख भंज। चीत आवे ता श्रद्धा पूरी, चीत आवे ता कबो न झूरी। अंतर राम राय प्रगटे आए, गुरपुरे दियो रंग लाए। चीत आवे ता सर्व को राजा, चीत आवे ता पूरे काजा। चीत आवे ता रंग गुलाल, चीत आवे ता सदा निहाल। चीत आवे ता सदन भरंता, चीत आवे ता सब रंग माणे। चीत आवे ता चूकी काणे, चीत आवे ता सहज घर पाया। चीत आवे ता सुन समाया, चीत आवे ता सुन समाया, चीत

अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाणप आगल भारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा से। मन मेरे गावर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। ज्यों बोहित भय सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन शीत काला हस दुख, नाम जपत मन होवत सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दिवावे।

कैसे फिटे गुरबा पे फिट कैसे फिटे गुर अंगद की ते कूड़ा रे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के ना विचारे गुर चौथी

हमारी जेबा एक प्रभ, जेबा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाहे। जेबा एक कवन गुण कही है, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने। कवन गुण कही है, जेबा एक तू समरथ बड़ा, मेरी मत थोरी राम, मेरी मत थोरी राम। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, मत थोरी तू समरथ बड़ा, बड़ी हूं।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आने हर तुम।

नानक सिखे बोलिए तन मन भी का हो सिखो ही का जुगिए भी कह की सोए सिखे तो

हर पुरख निरंजन जय हर सिमरन बया तैं उपाज गत कीनी बड़ पागी हर जपना।

एक श्वास अमोलक तेरा तेन हाथ न आवे लकी 24,000 श्वास बंदे दा अमदन भूल थी वे अमदन भूल थी वे

मन हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद। बड़ पागी गुरु सतगुरु पाया, गुण गावत परमानंद। जप मन सतनाम सत सतनाम।

चार बाप दो सिंह कुंकुम अब कैसे गुन गई जप मन सतना। चार बाप दो सिंह कुंकुम अब कैसे गुन गई है ऊठ तो बैठ ठेंगा पर कब तक मुंड लग गई हर

जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होइए जय त्याई हर पुरख निरंजना जय हर सिमरन भया तै अपार जगत कीनी बड पागी हर जपना बड पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है

वर्जें लोग राजा तासों तूती क्यों बने जाके जी पराओ सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच सलल निवास जैसे मीन की ना कटे रुच दीप कपरदास कटे प्रीत ना पतंग की उस सुभास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश आस कटे ना विहंग की कटाकन को मोर चात्र के उलास कटाकन को मोर चात्र कृदे उलास नाद बाद सुन रात कटे ना